0: और मैं पाचू
1: इटियो और रेडियो पियम ये करे वेर क्वारो
0: और मैं पाचू
1: इटियो और रेडियो

0: मार मैं पाचो
1: इटी विन्यो और रेडियो पियोंग चुनकेरे वेर क्वारो
0: पियोंग चुनकेरे वेर क्वारो
1: पिमार
0: मैं पाचो
2: इवान लंग यो बिरो टेला लोका कामु पेने
1: इटी विन्यो और रेडियो
3: Yeah, yeah, yeah. Just land secret.

0: और मैं पाचू
1: इटी विनो और रेडियो
2: द ब्रोजी बिट्स डॉन मिलियंस एंटरटेनमेंट आई एम माफिनो कनेक्ट आई एम अ मिस बॉय ट्रैक निगा जे